पारी झाड़ी बुटियां घस रखूं साझ पर्दा घर छोड़ी गाँव घूम जाऊं बाघ भालू बंदा हाथी चितवा पसे पछी रंग जन पछती हुन्छ चुपचाप बसे

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड
1: रेड पांडा मैराथन को मिति परिवर्तन संबंधी सूचना गति 2026 अगस्त 20 में आये विनाशकारी बाढ़ी पहरो ठूलो जनधन को स्थिति प्रति हमी गहिरो सकारात्मक छही राष्ट्रीय विपत्ति को गुजीला गंभीरतापूर्वक ध्यान दी उक्त मैराथन को मिति सारे हो। इस कठिन परिस्थिति में हम कार्यक्रम प्रति दुख्भ अटूट सहयोग विश्वास को हमी संपूर्ण सहभागी प्रायोजक स्थानीय समुदाय तथा आम दर्शक हृदयदेखि धन्यवाद नया नीति में इस मैराथन भव्य और सफलतापूर्वक संपन्न करना हमी थप सहयोग सलाह तथा शुभकामना प्रदान कर हार्दिक आग्रह रेड पांडा नेटवर्क संघ को सहकार में इस आयोजक समिति ने आगामी 2026 सेप्टेम्बर 5 में आयोजना करने वाने रेड पांडा मैराथन को नीति परिवर्तन करी 2026 नोवेम्बर 28 में आयोजना करने निर्णय विवरण संबंधी सब में जानकारी कराई।
2: स्वास्थ्य र वातावरण सेवा तिलो सिन्दूर।

0: 政府反驳不实的在。
1: 为啥子？因为其他好多什么在那些个，你只有阿拉些只有。
2: 可是，这还不是？哎，一滴个白掉些人，三万只生肖猫都一滴个白掉了，不是的？你猜的白木是做哪五十三？你是哪的呢？你是不是做另外一家生意？
1: 啊，你猜白木本身只有一个人，
2: 对了，他天了，
1: 他天了。
2: 是吗？你他说什么话呢？我阿弗勒他还没来把一个古拉列克尼瓦回来呢古拉哦。阿弥达摩说什么话呢？我说，咱们咱们，你也不是阿弗派达瓦斯瓦特卡拉耶回来呢，搞了说什么？伊斯塔说什么呢？什么在达摩多朗查、康迪巴尔查、米拉萨多朗查，这阿弥斯瓦斯们说什么来着？
1: 哦吼，听说来的伊斯塔说什么？是来达摩多朗查？
2: 我呢？ब्राह्मण का मिथ्या सूचना शेयर तथा कमेंट के पन गर्नु हुँदैन शेयर गर्ने भए पनि त्यो सूचना सत्य तथ्य हो कि होइन त्यो किन गर्नु पर्छ त्यसको स्रोत थाहा हुनु पर्छ नीति र फोटो मिल्छ कि मिल्दैन राम्रोसँग हेर्नु पर्छ आधिकारिक माध्यम हो कि होइन त्यो पनि थाहा पाएर मात्रै शेयर र कमेन्ट गर्नुपर्छ बुझ्यौ
0: भ्रामक सूचना नफैलाऊ जिम्मेवार नागरिक बनाऊ
3: आधिकारिक स्रोतबाट प्राप्त सूचनालाई मात्र विश्वास गरौ

0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्ज्वल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: संचय सोलु एफएम स्टूडियो टाइम
2: इट्स 1 PM दिउँसोको 1 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुतकुम नगर पालिका 5 सोलु खुम्बु
2: आदरणीय श्रोतावृन्द तपाई अहिले सुनिरहनु भएको छ सोलु एफएम सोलु एफएम मा अब तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ विभिन्न

0: साथी भाई खोजनो नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड
1: रेड पांडा मैराथन को मिति परिवर्तन संबंधी सूचना गत 2026 अगस्त 20 में आयोग विनाशकारी बाढ़ी पहरो ठूल जनधन को स्थिति प्रति हमी गहरो सही राष्ट्रीय विपत्ति को गुजीलाई गंभीरतापूर्वक ध्यान दी उक्त मैराथन को मिति सारिक हो। इस कठिन परिस्थिति में हम कार्यक्रम प्रति जुटाने अतीत सहयोग विश्वास को लगी हम संपूर्ण सहभागी प्रायोजक स्थानीय समुदाय तथा आम दर्शक हृदयदेखि धन्यवाद नया मिति में इस मैराथन भव्य और सफलतापूर्वक संपन्न करना हमीर सब सहयोग सुविधा तथा शुभकामना प्रदान कर हार्दिक आग्रह करद। रेड पांडा नेटवर्क संघ को सहकार में इस आयोजक समिति ने आगामी 2026 सेप्टेम्बर 5 में आयोजना करने वाने रेड पांडा मैराथन को मिति परिवर्तन करी 2026 नोवेम्बर 28 में आयोजना करने निर्णय विहरा संबंधित सब में जानकारी कराई।
2: अध्यक्ष निमा टेन्डु शेर्पा हिमाली स्वास्थ्य र वातावरण सुधार सुलभ नेपाल विद्युत प्राधिकरण सोलुखुम्बु वितरण केन्द्र को सार्वजनिक सूचना
3: संपूर्ण विद्युत उपभोक्ता महानुभावहर में विद्युत सुरक्षा तथा चेतनामूलक संदेश को लगी यह सूचना जारी कर
2: विद्युत का पुल तार ट्रांसफर्मर तथा अन्य विद्युत संरचना सधैं टाड़ा रहन्होस् भिजेको हातले विद्युत सामग्री नछुनुहोस् र बाल बालिकालाई विद्युत जोखिम बचाउनुहोस्। विद्युत सेवा निरन्तर र भरपर्दो बनाउन आफ्नो विद्युत महसुल तोकिएको समयमै भुक्तानी गर्नुहोस्। याद राख्नुहोस् 60 दिन भन्दा बढी विद्युत महसुल भुक्तानी नभएमा जुनसुकै समयमा विद्युत लाइन काटिनेछ।
4: विद्युत चोरी कानून विपरीत दण्डनीय अपराध हो। यसले दुर्घटना भन्सान स्थिति तथा विद्युत सेवामा अवरोध निम्त्याउँछ। चोरी देखिमा कानून कार्यवाहीको हुनेछ। पुलमा आगो लागेको तार नत्रिएको ट्रान्सफर्मर समस्या आएको वा कुनै पनि विद्युतीय जोखिम देखिएमा तुरन्त जानकारी गराई ठूलो दुर्घटना हुन बाटो बस्नुहोस्।
2: थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बरहरू कार्यालय प्रमुख 98-52-85-32-26 प्राविधिक प्रमुख 98-52-85-27 सूचना अधिकारी 98-52-85-12-26 र काउन्टर 0-38-52-04-03
4: समयमै महसुल गरौ उचालो भविष्य निर्माण गरौ नेपाल विद्युत प्राधिकरण द्वारा गृहितमा सारी सन्देश।

0: रेलो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: स्टूडियो टाइम
2: टाइम
3: चेक को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलुदुत्कु नगरपालिका 5 सोलुखुम्बु

0: Raio Rádio Insono é
1: Sono FM, 101.2 MHz. Ujjwal bhavishyako lagi hamro abhiyan.
2: Sono FM, studio time.
3: It's 6 p.m. Chandrapur, 6 baje.
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू

0: जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्यको लागि हाम्रो
3: Studio time.
0: It's 7 p.m. Start to start with.
4: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुकुमा नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: संक्षेप सूर्या सिंह स्टूडियो टाइम
2: इट्स 8 PM रात को 8 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोनू दुकुम नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू
3: Wherever you are, take your